हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि

अरे पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एक साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नु होला।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज
2: खरो विषयमा सरो बहस नेपाली बहस।

0: 물이 에러다? 라우.
1: 아하, 코티 람로 먹어 수다. 까바들 라고.
0: 까바도 오노니. 멀리 디디바니 순사리 거거나 우드고 바다 라고니.
1: हजुर हामी कहाँ नयाँ तथा पुराना आकर्षक डिजाइनमा सुनचारीका गरगहना अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ।
2: दिदीबहिनी सुनचाँदी गरगहना उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर मेनुका बराइली सम्पर्क नम्बर 9818-3274-73 9861-7549-88 9861-7549-88

0: कईयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला रात को 9 बज्यो।

0: परमात्मा इस प्रकार को यात्रा समारोह संपन्न करी सके पछे अहिले लाल बाल गाई बाछा गोठाला तमाम को शायद आत्म प्रोग्राम सुसंपन्न करी अहिले भगवान को फिरकी छवारी को कोई प्रतीक हुना आटो बनने समन को कथा ये सज्जा बट
1: श्रीमद भाव महाप्राण।

0: न जाओ कृष्ण छोड़े रहे
1: वृंदावन
0: हरे। अच्युतम केशवम राम नारायण
1: अच्युतम केशवम राम नारायण
0: अयोध्या को राम लक्ष्मण मथुरा को श्याम।